0: एलजीले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ्स गुड।
1: It's always fun when you hear

ड्राइभमा जाम कति धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gas.

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ गुड

सपन साथी धुमधाम राइट सपन नया ईदी मेरो दियागो ईदी संग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun.